से पाऊं जो तेरे रंग रासे स्वामी तिनका जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिस

0: अकाल मूर्त अजूनी साहब अंगुर प्रसाद आशा माला पहला वास लुकाना शोक के महले पहले के लिखे तुमने असराजे
1: श्लोक मल्ला पहला बलिहारी गुरु।

धरती दबी पार पै बिच इंद फिरे सिर पार पै बिच राजा धर्म द्वार पै बिच सूर पै बिच अंधेर।

पालो मंडला खंडा पर पंडा अन्न जेठ पुत पूजा खाली से तुझा सोम जाने नानका सरा मेरा जनता नान जनता पाए के सामान्य सपना जिन करती करना की चिंता भी कर दिता सो करता चिंता करे किन पाया जन तेजवारी स्वादा ते तिदवार बाकी नानक तुझे नाम बिल क्या टिका कहता।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो होछी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों

उड़ो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण की

मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिने हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखन लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस्म की सी।

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर एक कहते हैं कि बिखियन स्यो काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनु असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनु असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी च जदों उदास लफज आता है तो इस दे जो भाव हैं इस दे अर्थ हैं वह टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफज नु किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनु असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਟਾ, ਇੱਕ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਥੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है, उसकी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उसकी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वालों की संगत गुरबाणी के विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उसके जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरामता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन्हां चीजां दे विच ही उलझे रहिंदे हो, फसे रहिंदे हो, खोए रहिंदे हो, तुसी इन्हां दे विचों कदे उपराम ही नहीं हुंदे। भाव के तुसी कदे अकदे ही नहीं हो, कदे रचदे ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हां चीजां दे विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते निमक भरते वास्ते भी पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्होंने जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध विख भूख प्यासा आ साडे पल्ले। काम क्रोध विख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, भाव जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया के झमेलियां तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत विरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का भाव जदों इन्हां चीज़ां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनने च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे हन

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित करे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित करे अजिही चीज नहीं लगता जिड़ी कि हमेशा ही कायम रवे, ना कि तू उन चीजा नु लगता रहना है जिड़िया ने बिन सी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नू कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया दे खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असीं इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर इह देखणा है कि साडी रुचि बदली है जां नहीं बदली। असीं अपने आप ते सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असीं जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म दी साडी रुचि है, अतै जिस किस्म दी रुचि हुंदी है उसे किस्म दा इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो। कहिंदे

सत्संग विद्या के हाजिरी पर कई प्रेम दिए बस अमूल्य है। महान साधना प्रतीक समय कीर्तन गाना

मानस जन्म अमोलक पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाक आयो, लाद्यों का निर्भिक जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगावी जो पुर्ज पहा मोहन ठगावी।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर की दे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कहिए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

फिर कले सुर जाए एकांत कह के अपने सारी चीज मूल मंत्र का जाप करे पर बड़ा महम बड़ी शक्ति है लंकारी मंत्र जितना जप लो एदा बड़ा काम तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर नाम ओ नाम वाहिगुरु जी का के जपांगे सतगुरु दियां मेहरां फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी परलोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन माफी और

0: नान के शिवारी हम बिनाया सो करे जे फिर जा सो पुत्रा हम शिवा है गुरु
1: अनुगुरु नान सचे पातशाह आप जी की महान बख्श द्वारा आप जी के सोहने दरबार दिन हाजिर करते

बिंदरा बन मन हरन मनो गोकल मधे श्याम गोदी गल कर रहे ने। बिंदरा मन मन हरन मनो।